0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: थैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

पुराण ध्यान महायज्ञ में सादर निमंत्रणा नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा को आयोजना में धर्म जागरण पितृमोक्ष सत्संग भवन निर्माण र दैविक प्रकोप विपद कोष स्थापना को पावन उद्देश्य सहित श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को भव्य आयोजना हुन गइरहेको छ। यस महायज्ञमा विशिष्ट वक्ता प्रमुख वाचक पण्डित श्री डिलीराम गौतमज्यूको मुखारविन्दबाट सुमधुर संगीतमय भजन कीर्तन र कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धनको पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्वत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्वत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 9852445779 9849924909 9844994913 9141969945 9844446550। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

0: अपनी प्यारी आवेर में मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी मुंह में चुनकरी बिचारा अलसम माले बात पर ही बसी रोले मुंह पर क्या कुस्तो खत्म की बोले टिलर जार दोगर माचे राग उसको माले ये ला ओ पोस्टिंग मेरी बुढ़ी
1: बुढ़ी बंदर इस तरह
0: ओ डार्लिंग आई लव लव आई लव यू My sadhu putla flying after see you. Angrezi bujhdena. Tale dekhera sadhu putla urja bhanya ka.

0: जी पापा।
1: हाँ बिटुआ, वो हम लोगों को मंगल ही सनी, वो इले कार्ड फंड आया था, बस पार कर लिया रहा है यहाँ।
0: हाँ पापा, वो ये साथी।
2: हम्म।
0: गांव वाटो मंगल ही आया रहा था, लीना जाम ना।
2: थू थू कूरे?
0: मंगल ही।
2: मंगल ही।
0: जाम ना जाम, हे प्लीज। ए जाम न जाम त्यो सब बिर्सियो के हो पहिला
2: हुन्छ
0: हुन्छ
2: लाइन।

0: 19 सुप्रीम टायर रिसोलिङ सेन्टर भिनपा छ पार्टी खोला चरीकोट दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: नमस्कार
1: रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैले में थोपलो सात में गया बाटो मोमपति प्रसाद साहब को आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 29 तारीख आश्विन 13 गते मंगलवार तृतीय तिथि
0: अब स्तुति करूं
2: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

बक सरी छहुन राजा नौश काय सरी दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जय नई परे का घरे मंडाखुन सबले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी हो सर्वा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान हो शिशु जनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित।

कालो हरि हरि सबैले मन सफा राखौ नपारौ है कालो हुर्कायौ किर्किन कृष्ण बढायौ किन